आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराएं नहीं। ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नज़रअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक सेकेंडरी।

DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
2: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
4: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराएं नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नजरअंदाज करें।

बातम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मिला। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। और दोस्तों आज लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: रानी के बोले मौसम ही सुहाना है मेरा दिल ही दिल। हेलो नमस्ते सर।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका?
0: अंजना शर्मा।
1: अंजना जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी से।
1: बताएं अंजना जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर गाने के बोले मौसम ही सुहाना है मेरा दिल ही दिल।
1: बिल्कुल सुना रहे अंजना जी आप।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का में आप

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो,
2: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो,

0: हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं।
0: सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं सर। मोनिका।
1: मोनिका जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: गाना है सर, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, खो बैठे।
1: कौन सा गाना है, दोबारा दोहराएं।
0: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, खो बैठे। पुराना है सर।
1: बिल्कुल सुना रहे मोनिका जी, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस पर। कुल किया धन्यवाद।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम बताएं सर।
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, जिला विदिशा मध्य प्रदेश एमपी से।
0: हारून जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
1: हाँ, फिल्म का नाम है
0: जी
1: दो जिस्म में
0: जी, गाना बताएं।
1: गाने के बोले हैं तेरा प्यार है क्या, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: 99.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
0: यहां हर बीट में है सिटी का स्वर। 89.6 पे रेडियो डीएस,
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका

0: प्रसाद है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
3: नमस्ते दीदी।
4: नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
3: लतीफ अहमद रैना, कश्मीर से।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
3: आज आपकी पसंद पे छोड़ता हूँ, मोहम्मद अजीज की आवाज़ में सुनाई।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
3: मैडम आप कब आएंगे यहाँ कश्मीर में?
4: सर टाइम मिलेगा जब आएंगे।
3: हाँ, यात्रा करने के लिए आज यहाँ पे पर्यटक बहुत सारे आते हैं यात्रा करने के लिए।
4: यहाँ पे टाइम नहीं मिलता इसलिए।
3: अम्बरनाथ दर्शन करने के लिए आते हैं?
4: हाँ पता है, वो तो जम्मू कश्मीर में दर्शन करने के लिए आते हैं। आएंगे सर, कभी टाइम मिलेगा जरूर आपसे मिलने।
3: हाँ, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, मैं आपकी आवाज़ को बहुत पसंद करता हूँ।
4: धन्यवाद सर।
3: शुक्रिया।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
0: यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
4: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
3: रूपचंद गोयल जी नमस्कार, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
4: आज ये गीत सुनना, पिक्चर का नाम है तहलका, के बोले मेरे छतरी के नीचे आजा।
3: तो बीजे कमला खड़ी खड़ी,
4: जी जी जी
3: बिल्कुल सुना रहा हूँ रूपचंद जी आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीएस में इतनी देर से।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
0: यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर।
3: हेलो
4: हेलो,
3: नाम क्या है आपका? काजी, कहाँ से बात कर रहे हो? आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा बाहर आओ। हेलो, हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना।
4: थैंक यू,
3: वेलकम।
5: राय

दोस्त तो वक्त हो चुका है 10:39 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए।

0: हेलो
1: जी नमस्ते, नाम बताए सर
0: जी। नमस्कार, और सुनाओ साहब, ऋषि बाबू कैसे हो?
1: और बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
0: तो सुना है मैं इसको हूँ।
1: बिल्कुल सुना रहे बाबूलाल जी, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग। 89.6
2: पे रेडियो डीएस, हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर।

0: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार सर, नाम बताएं आपका।
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिलुकेड़ा से।
1: तुलसीराम जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
0: झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार परसाया।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश पे, बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस पे।
0: धन्यवाद सर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए सर।
1: चौधरी निवेदन कर रहा
0: हूँ। चौधरी जी, कौन सा गाना सुनना है?
1: गाना सुपर हिट लाए हैं सर।
0: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: आप? रेडियो डीएस को समर्पित है बिछुआ मोरे सजना का प्यार।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पड़ेगा।

0: हेलो
1: जी, नाम बताइए सर।
0: अभिषेक राजपूत।
1: अभिषेक राजपूत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गुनगापुर सिटी।
1: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
0: लाइफ।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: दोस्तों, वक्त हो चुका है 11:04 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस, और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है हरिकेश मीणा जी ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: जी नाम बताएं सर।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: सर आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लबानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू लबानिया जी, कैसा मौसम है उत्तर प्रदेश आगरा में?
1: मौसम मस्त है साहब, फर्स्ट क्लास। बारिश हो रही है, मंद मंद बारिश हो रही है।
0: अच्छा अच्छा, आज तो हमारे गंगापुर में भी ऐसी वाइब आ रही है सर, बिल्कुल आज जैसा ही मौसम हो रहा है।
1: हाँ, रात को बारिश हुई है यहाँ, कल शाम को बारिश हुई थी।
0: हाँ बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बरसा बरसा घटाओं से पानी
0: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के बेहतरीन सब।

0: सक्सेना नाम पुत्र का जी, नाम बताए पहले आपका।
1: मनोज सक्सेना।
0: सक्सेना जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नशिया कॉलोनी।
0: पता है सर कौन सा गाला सुनना चाहते हैं आप रेडियो डी एस पे?
1: सर वो अपने वो है ना बहुत बिरन कौन सा चिट्ठी आई है चिट्ठी
0: वैसे नाम से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी प्रोवाइड से बेहतरीन सर। सॉन्ग रेडियो डी एस में कौन गया बदबू दिल्ली

0: हेलो
1: जी, नाम बताइए सर।
0: रफीक खान बोल रहा हूँ सर।
1: रफीक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: लोगो मस्जिद के पीछे से।
1: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: आने से उसके आए बार।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: सौरभ मीना।
1: सौरभ जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी नसिया कॉलोनी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: तू आके

0: हेलो
1: हेलो सर
0: जी, नाम बताएं।
1: राघव प्रकाश।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नसिया कॉलोनी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाड़ी 150 बजा रहा
0: है।

0: हेलो
1: जी, नाम बताए सर।
0: टैक्सी में मुझे
1: सचिन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: नशे पलंग।
1: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: मूवी का नाम है राज हिंदुस्तानी और गाने का नाम परदेश।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद।

तो वक्त हो चुका है 11:30 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो हेलो क्या
0: जी, नाम बताएं सर पहले आपका।
1: मेरा रोशन है, मदीना मस्जिद से बोल रहा हूँ।
0: मदीना मस्जिद से कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर?
1: जब जब पुकार मैं चली आऊँ नदिया किनारे।
0: तू जब जब मुझको पुकारे मैं चली आऊँ नदिया किनारे। सुना रहा हूँ सर, आपकी बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में बोल गया। धन्यवाद।

0: जी नाम बताएं सर आपका।
1: भानु प्रताप सिंह डोई।
0: भानु प्रताप सिंह डोई जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: करौली से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: डिप्रेशन फर्स्ट।
0: डिप्रेशन फर्स्ट?
1: हाँ।
0: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश। मिक्सिंग

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सर जी कहां से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी राजेश कॉलोनी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: यार मेरा दिल तेरा दीवाना।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी प्रोवाइड का ये सॉन्ग।
2: थैंक यू सर।
1: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम बताएं।
1: तनुजा
0: सैनी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सिटी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से? तुम ही हो
1: हाँ।
0: सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश के बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस पे। कॉल किया, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: राहुल मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये धोखे प्यार के धोखे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जी योगेश जांगड़े, बेमेतरा छत्तीसगढ़।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: फिल्म साजन से सुनवा देंगे कोई सा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपके फरमाइश पर ही ना।

0: यस
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: देवेंद्र।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: नशे का लड़ी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कॉलेज वाली छोरी।
1: कौन सा?
0: कॉलेज वाली छोरी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जय इस छोरे गल्ला सेटिंग हो जा
1: जी साजा, छोरा तो घना एंडी है।
0: न्यू बता सेटिंग कितनी क्लियर है, है?
2: सेटिंग
3: हेलो तो हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: नाम है कोरमीना।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: नसिया कॉलोनी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: बदनाम।
3: ओके सर,
4: बदनाम का।

0: पिछा वेखे नी
1: पिंडो सरपंच भी मत। हेलो
2: जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी? कौन सा?
1: काला सा काला।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: जब बन जाए अंगारा।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: धीरूभाई ठाकुर।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मऊ गाला।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाना है वो, क्या नाम है वो, मेरे मन में भूल ना जाना, मेरे दूध का कट चुकाना।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: प्रज्ञा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तू मान मेरी जान, मैं तुझे जान में दूंगा। मैम अभी चला देना थोड़ा ना।

0: अपन तो क्यों कर रहा है ये सब, क्यों और मुश्किल कर रहा है मेरे लिए। तू जा बस।
1: ठीक है।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: दीना।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगा खुशी की।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: साइलेंट लव।
3: कौन सा?
2: साइलेंट लव।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: जब खनके जान जो सिल्वर दी।
1: ओके मैम, सुना रही।

0: राधे राधे दीदी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम समता जाधव ने बाढ़ कला से बोल रही हूँ दीदी।
0: हाँ दीदी, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: गाना है चूड़िया कन की कनकाने वाले आ गए।
0: ओके दीदी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जी नमस्ते।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: हंडीराम गुजर बोल रहा हूँ मैडम।
1: सर कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गांव बजरिया से बोल रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: सर गाना ये है दिल के अरमान
1: में रह गए। सुना रहे हैं आप?
0: थैंक यू सर।
1: वेलकम सर।

0: बीच में है शहर का कमाल DS 89.6।
1: अरे बेटा सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
2: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
1: बहू को अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
2: दो दिन दो साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है एक बच्चों के। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम आपका मनपसंद नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
0: यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आप

6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का में आपकी रेडियो दोस्त अरजे फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6
1: DSFM
0: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बोली बिसरी आदि। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आप

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे राजस्थानी कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। तो सुबह तो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें।
0: वो किसर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: यू वेलकम सर।

0: पूछना चाहोगे?
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति मतलब दीदी, आप कैसी हैं? मौसम कैसा है?
2: सर मैं ठीक हूँ, मौसम बरसात हो रहा है सर
1: जी। यहाँ भी झमाझम बारिश हो रही है, अभी अभी शुरू हुई है और सुबह भी काफी अच्छी बारिश हो रही थी और 4:15 से अभी तक झमाझम बारिश हो रही, बहुत तेज है।
2: हाँ सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: फिल्म का नाम है सर सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद आपको।

0: हेलो अस्सलाम
1: वालेकुम सलाम सर, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम है मोहम्मद कैफ।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: कर्मचारी कॉलोनी क्रिएटिव स्कूल।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: छत पर ना सला देना हम नींद में चलते।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपके।
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ

0: जी, नाम क्या है आपका?
1: अम्मा खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: कलम करे कॉलोनी गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दूसरा तो सब इच्छा ना सुना।
0: ठीक है।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करी गाना

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: दिन में पहली बार मुलाकात। देखो, किसी शख्स को अगर हम बचपन से भी जानते हैं और उसे हम दिन में पहली बार मिल रहे हैं, तो या तो हम उसके पैर छूते हैं, या फिर उनसे हाथ मिलाते हैं, या फिर उनसे गले मिलते हैं। लेकिन आपसे मैं ये कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भैया फिजिकली पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपसे दिल मिलाना चाहता हूँ। और दिल कैसे मिलेंगे? सुर के साथ, ताल के साथ, लय के साथ और शानदार गानों के साथ। तभी आपके लिए मैं प्ले करने वाला हूँ बैक टू बैक चार गाने ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

दिल्ली के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: दोस्तों 5:46 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे स्वयं ट्यून कर रहे 99.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस यानी 29 पर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
2: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
4: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना दूं।

दोस्तों अभी आपने सुना हेलो फरमाइश कार्यक्रम। फिलहाल आप इस वक्त मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है आपके मन पसंद कार्यक्रम भजन संध्या का। तो सुनते हैं ये प्यारा सा एक भजन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: इतनी बड़ी स्टील कंपनी का मालिक,

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
4: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
6: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
7: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

प्रिय श्रोताओं, संत कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि मानव शरीर किसी विष की बेल के समान विकारों से युक्त होता है, किंतु गुरु किसी अमृत की खान के जैसे होते हैं। यदि गुरु से मिलने के लिए अपने शीश का दान भी देना पड़े, अथवा शीश का दान देकर भी अगर गुरु की प्राप्ति हो जाए, तो वो शीश का दान भी सस्ता है।

प्रिय श्रोताओं, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं कि हमें हमेशा मधुर और विनम्र बोलना चाहिए, जिससे न सिर्फ हमारे मन को शांति मिले बल्कि हमारी वाणी सुनकर, हमारी आवाज सुनकर औरों के मन को भी शांति मिले।

प्रिय श्रोताओं, इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी हमें समझा रहे हैं कि केवल बड़ा या शक्तिशाली होने का कोई लाभ नहीं यदि आप दूसरों के काम ना आए। जिस प्रकार खजूर का पेड़ ऊंचा होने के बावजूद भी किसी राहगीर को छाया नहीं दे सकता, और तो और उसका फल भी बहुत ऊंचाई पर होता है जिससे कोई भी उसके फल को खा नहीं सकता। इसलिए जीवन में बड़ा होने का महत्व तभी है जब किसी और का जीवन आपकी वजह से अच्छा।

कबीर दास जी के इस दोहे का अर्थ है कि जो निंदा करने वाले हैं, अर्थात जो आपके बारे में सच बोलने वाले हैं, यानी जो आपको आईना दिखाने वाले लोग हैं, उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारी बुराइयों को बता दिया करते हैं और बिना पानी बिना साबुन के हमारे जीवन को

दोहे का अर्थ है कि जब मैं दुनिया में दूसरों में बुराइयां ढूंढने निकला तो मुझे कोई भी इंसान वास्तव में बुरा नहीं मिला, किंतु जब मैं अपने हृदय में झांका तो पाया कि सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता तो मुझ में है, अर्थात मानव को किसी दूसरे में बुराई खोजने से पहले स्वयं की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

दिन कोई कुम्हार जब घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था, तो मिट्टी कहने लगी कि आज तू मुझको रौंद रहा है, किंतु एक दिन ऐसा आएगा

0: दोहे में कहते हैं कि ये मानव जीवन पानी के बुलबुले के समान है। जिस प्रकार भोर होने पर सभी तारे छुप जाते हैं, उसी प्रकार एक दिन हम सभी काल के मुख में समा जाएंगे।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: DS साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स।
3: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: दोस्तों इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम भक्ति संध्या। दोस्तों अभी फिलहाल गंगापुर सिटी का वर्तमान तापमान 29 डिग्री के साथ साथ आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

अपन तो क्यों कर रहा है ये सब, क्यों और मुश्किल कर रहा है मेरे लिए। तू जा, तू जा बस।

dust to dust and ashes to ashes. May her soul rest in peace.

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।